0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जो चीज आसमानों में है और जो चीज जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है कि जो बादशाह हकीकी पाक ज़ात जबरदस्त हिकमत वाला है।
1: वॉइस ऑफ नॉर्वे से मैं हूं आपकी प्रेजेंटर अंबर हकान। खूबसूरत नगमात, अछूते खाके, कौमी खबरें, बैनुल अक्वामी खबरें, खेलों की खबरें।

currency rates. पल-पल की खबर हर पल, आपकी पहचान आपकी जबान, आपकी आवाज, वॉइस ऑफ नॉर्वे।

0: प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं।
1: ये तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है।